0: समझ ही गए होंगे कि केसर स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट है जीटीए की पहली पसंद। डाइन इन, टेक आउट या लाइव केटरिंग, फ्यूजन खाना बने हर बार बिल्कुल फ्रेश। फैमिली एंड फ्रेंड्स के लिए घर जैसे खाने का अड्डा। नाउ टू लोकेशंस इन ब्रैम्पटन, केसर स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट।
1: रेड एफ एम है तो हड्डी पसंद, ते वसदा है तो हड्डे दिल विच। ता हुण एक गल दसो अपने अंदाज विच। 20 सेकंड का म्यूजिक वाला जिंगल बनाओ या जिंगल दे कैची लिरिक्स भेजो। सेलेक्ट कीते जिंगल रेड एफ एम ते प्ले होंदे रहेंगे तो हड्डे ना देना। सो माइक चको, जिंगल बनाओ ते दसो दुनिया नू रेड एफ एम तो हड्डे ले की है। 15 सितंबर तो पहला अपना जिंगल सबमिट करो contests@redfm.ca ते। रेड एफ एम, तो हड्डी आवाज, तो हड्डी वाइब, तो हड्डा जिंगल।
2: You're listening to Pyar De Rang

समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री हूँ तीन लोकेशन तो तुहाडी सेवा विच अज विजिट करो 1850 एल्बियन रोड इटोबिको कॉल 416-213-1165 समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री।

0: की तुहानू ऑटो या होम इंश्योरेंस महंगी लग रही है या तुहाडे बिजनेस दी कमर्शियल इंश्योरेंस प्रीमियम्स ने परेशान किया होया तां टेंशन ना लवो अज ही कॉल करो अमनदीप कौर नू ए बिना कवरेज कटाए पैसे बचाउण विच तुहाडी मदद करनगे
1: चाहे तुसी पॉलिसी रिन्यू कर रहे हो कंपनी स्विच करनी है पहली बार इंश्योरेंस लेनी है या कोई भी होम या ऑटो इंश्योरेंस होवे अमनदीप कौर नू कॉल करके सेम डे फ्री कोट लो
0: अनबीटेबल सर्विस फुल कवरेज अते अनबीटेबल प्राइसेस ले कॉल अमनदीप कौर एट 647-203-8144-647-203-8144
2: की तुहाडा वर्क परमिट आ गया है हुन पीआर ली नेक्स्ट स्टेप बारे सोच रहे हो ता अज ही दी एडमिशन काउंसिल नाल अपना सही करियर पाथ चूज करो
1: एक्सप्लोर करो पीएसडब्ल्यू ते ईसीए प्रोग्राम्स करियर फोकस ट्रेनिंग ते इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज दे नाल हेल्थ केयर ते एजुकेशन सेक्टर्स विच अपना एक्सपीरियंस बिल्ड करो
2: पीआर एलिजिबिलिटी तुहाडे प्रोफाइल ते वर्क एक्सपीरियंस ते डिपेंड करदी है इस करके राइट गाइडेंस अते प्रोफेशनल हेल्प लई दी एडमिशन काउंसिल नु कॉल करो एट 437-457-3300
3: इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि जर्रे जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है
4: अरे भाई किसको
3: पिज़्ज़ा फीस्ट को
5: सिर्फ $15 में मीडियम पिज़्ज़ा विद 3 टॉपिंग्स सब में 2 कैंस ऑफ पॉप और 2 डिपिंग सॉसेस भी टैक्सेस इंक्लूडेड स्पेशल रेड एफएम लिसनर्स के लिए ये है पिज़्ज़ा फीस्ट की सुपर से भी ऊपर वाली डील विजिट 275 गार्डन ब्रुक ट्रेल यूनिट 105 ब्रैम्पटन और कॉल 905-794-5767
3: पिज़्ज़ा फीस्ट
6: यू आर लिसनिंग टू प्यार दे रंग

0: Hey, what's happening?
1: Join the discussion.
2: Hello.
1: Find us on Twitter at Red FM Toronto.
3: चाहे जाना होवे इकल्ले या फैमिली दे नाल इंडिया

0: पाकिस्तान की तहजीब, पाकिस्तान का संगीत, रिवायती नए और कभी जोश से भरे गीत, हल्की फुल्की गुफ्तगु, चीदा चीदा खबरों पे तबसरा, अंदाज अनोखा तो कभी माहौल मजे से भरा।
1: रेड एफएम पर पेश है हमारा पाकिस्तान शहजाद हुसैन के साथ।

इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि केसर स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट है GTA की पहली पसंद. डाइन इन, टेक आउट या लाइव केटरिंग, फ्यूजन खाना बने हर बार बिल्कुल फ्रेश. फैमिली एंड फ्रेंड्स के लिए घर जैसे खाने का अड्डा.

0: रानी राजधानी।
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: अपनी गल होवे या अपने परिवार दी या अपने बच्चों दे भविष्य दी, फिकर हर एक नु ही हुंदा है। इसलिए ऑल काइंड इंश्योरेंस दे लखवीर सिंह टट नु कॉल करके अपने भविष्य लई बेफिकर हो जाओ। लाइफ इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी, क्रिटिकल विजिटर या सुपर वीजा इंश्योरेंस, RESP, RRSP, स्टूडेंट्स दी मेडिकल इंश्योरेंस प्लान्स दे कोट्स ऑल मेजर कैनेडियन कंपनीज तो लेके देणगे। ए अपने काम विच बहुत ही प्रोफेशनल हन। लखवीर सिंह टट फ्रॉम ऑल काइंड इंश्योरेंस। 416-624-9798, 416-624-9798,
3: 97 98। वाली है दिवाली ते नाल ही रेड एफ एम लिया है दिवाली धमाका, प्रेजेंटेड बाय स्कोशिया बैंक।
4: रेड एफ एम दिवाली धमाका।
5: शॉपिंग ले सजेगा वड्डा बाजार, आउटफिट, ज्वेलरी, गिफ्ट, डेकोर आइटम्स अते बहुत कुछ।
3: फेस्टिव फूड स्टॉल्स अते वक वक खाने दे ऑप्शंस,
5: म्यूजिक, मस्ती एंड फुल ऑन सेलिब्रेशन।
3: आओ मिल के मनाइए दिवाली दिया खुशियाँ।
5: कमिंग सून टू योर सिटी।
3: स्टे ट्यून्ड।

सोशल मीडिया पे नजर दौड़ा रहा था, अली मोइन है, पाकिस्तानी राइटर हैं, उन्होंने एक पोस्ट लगाई है, डियर ऑप्टिमिस्ट पैसिमिस्ट एंड रियलिस्ट। होता है ना भाई, कुछ कहते हैं जी ग्लास आधा भरा है, कोई कहता है आधा खाली है, तो ऑप्टिमिस्ट पैसिमिस्ट रियलिस्ट। तो इन्होंने लिखा डियर ऑप्टिमिस्ट पैसिमिस्ट एंड रियलिस्ट, व्हाइल यू गाइज वर आर्ग्यूइंग अबाउट द ग्लास ऑफ वाटर आई ड्रैंक इट, सिंसियरली द ऑपरचुनिस्ट। तो ये भी एक आइटम है जी, ये भी एक होती है किस्म जो हर जगह पहुंच जाते हैं, घुस जाते हैं, जहां फायदा मिला उठा लेते हैं। लेकिन चले दूसरों का हक तो नहीं मारना चाहिए, मगर कम से कम अपना हक तो लेना चाहिए, अपना फायदा तो हासिल करना चाहिए। और इसलिए कह रहा हूं कि पिछली मरतबा नहीं, अभी थोड़ी देर पहले हम जब बात कर रहे थे तो ये बात हो रही थी ना भाई, कोई गोल, कोई प्लान, कोई अरमान, कोई सपना, तो वो तो हक है, ऊपर वाले ने हमारे लिए कुछ रखा है, उसके लिए कोशिश तो बनती है कि नहीं। अच्छा जी, बातों का सिलसिला जारी रखेंगे। एक तो मैसेज है जितेंद्र दाहिया जी का, लिखता है सलाम अलैकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम जितेंद्र जी, कैसे हैं? अच्छा आप लिखते हैं कैसे हैं जनाब, शुक्र अल्लाह का, थैंक गॉड, सब बढ़िया है। कैन यू प्लीज प्ले दिल जलाने की बात करते हो भाई रेशमा जनाब, बिल्कुल जी, फरमाइश आपकी जो अगली पूरी कर रहे हैं। और वैसे क्योंकि मैं बड़ा इंजॉय करता हूँ रेडियो शोज, और एक साथ है हमारा आपका, तो थोड़ा सा इसमें एक गैप आएगा, एक वक्फा आएगा, महीने भर की छुट्टी पे जा रहा हूँ। तो अब वैसे आमतौर पे थर्सडे को मैं कहता हूँ कि अब मुलाकात होगी वीकेंड के बाद, लेकिन इस मरतबा मुलाकात होगी थोड़े ज्यादा दिनों के बाद। बहरहाल साथ रहिएगा, यही सुनते रहिएगा। और फिल वक्त तो मैं जो देख रहा था कि मुख्तलिफ अखबारात जो बताते हैं किसी ना किसी ड्रामे के बारे में, म्यूजिक वीडियो के बारे में, गाने के बारे में, तो हानिया आमिर पाकिस्तानी एक्टर सेलिब्रिटी जो है उनके बारे में लिखा है, हानिया आमिर मेक्स म्यूजिकल डेब्यू विद पंजाबी हिप हॉप सॉन्ग पाब्लो, ट्रैक फीचर्स एन अनएक्सपेक्टेड वॉइस नोट फ्रॉम इंडियन टीवी पर्सनैलिटी राखी सावंत। अरे अच्छा, ओए होए, मैंने अभी अभी ये देखा। अब ये तो हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई ये गाना लाएं आप सिस्टम में ताकि हम चलाएं, तो अब पता नहीं कब चला पाएंगे हम। बहरहाल जो अभी हम कर सकते हैं वो तो हम कर दें। और ये है जितेंद्र दाहिया जी की फरमाइश, दिल जलाने की बात करते हो बाई रेशमा।

0: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀਤਰਪਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੈਡ ਐਫਐਮ
1: ऑटो या होम ओनर्स अगर आप अपनी नई या रिन्यूअल इंश्योरेंस मार्केट में ढूंढ रहे हो और क्लीन ड्राइविंग रिकॉर्ड होने के बावजूद रेट्स बढ़कर आए हैं तो आज ही कॉल कीजिए ऑल स्टेट की एजेंट दीक्षा गुलेरिया को 8647656810 फॉर अ नो ऑब्लिगेशन कोट ये आपको देंगे बेस्ट प्राइस सही कवरेज ऑनेस्ट एडवाइस और पॉलिसी के बाद बेहतरीन सर्विस भी तो अगर आपको इंश्योरेंस सिर्फ करवानी नहीं स्मार्ट तरीके से करवानी है तो कॉल 6476562810 दीक्षा गुलेरिया फ्रॉम ऑल स्टेट You are in good hands. ਤੁਹਾਡਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਇਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਹਰ ਸਮਾਈਲ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹਰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਅਨਫਰਗੇਟੇਬਲ ਮੈਮਰੀ ਵਿਦ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬਾਈ ਜੇਦਾਸ
2: ਵੈਡਿੰਗ ਐਨਿਵਰਸਰੀ ਬਰਥਡੇ ਜਾਂ ਹੋਵੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਵੈਂਟ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਇਨ ਹਾਊਸ ਕੇਟਰਿੰਗ ਟੀਮ ਪਰਫੈਕਟ ਇਵੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ
1: ਲਿਮਿਟਡ ਸਲੋਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਫਾਰ 2027 ਇਵੈਂਟਸ ਫਾਰ ਬੁਕਿੰਗ ਕਾਲ 9055641920 ਔਰ ਵਿਜ਼ਿਟ 125 ਡੈਰੀ ਰੋਡ ਵੈਸਟ ਮਿਸਿਸਾਗਾ Mississauga Convention Center by Jaydas.
3: You are listening to Humara Pakistan.
4: Assalamu alaikum ji, mera naam hai Yasin Nawaz aur aap log sun rahe hain Humara Pakistan Shahzad Hussain ke saath Red FM pe.
5: हाँ जी बिल्कुल सुन रहे हैं और यूं ही सुनते रहिए बातें करते रहिए लीजिए 15 मिनट्स रह गए हैं शो खत्म होने में. अच्छा एक तो ये कि कुछ देर पहले मैंने जिक्र किया हानिया आमिर म्यूजिकल डेब्यू उनका पंजाबी हिप हॉप सॉन्ग पाब्लो के साथ. फिर सोनिया हुसैन जो हैं उनका ये पर्दा उठाना एक नए गाने से राहत फतेह अली खान साहब और अबरारुल हक के साथ. तो ये तो खैर वो हैं जो नए मामले हैं. लेकिन मैं देख रहा था वाइटल साइंस वो बैंड जो खत्म होने के 26 साल 26 इयर्स बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा है. वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के लोक विरसा में हाल ही में होने वाले कॉन्सर्ट में गुलूकार और मौसीकार रिजवानुल हक को एक ऐसी चीज ने हैरान कर दिया जिसकी शायद उन्हें खुद भी तवक्को नहीं थी. वो साथ ही मौसीकार गुलूकार अब्बास अली खान के साथ एक शो में बतौर साबिक म्यूजिशियन वाइटल साइंस शरीक थे और बैंड के चंद गाने पेश करने आए थे. उनके हाथ में सिर्फ एक एकोस्टिक गिटार था मगर सामने मौजूद सामईन की याददाश्त शायद किसी मुकम्मल ऑर्केस्ट्रा से भी ज्यादा ताकतवर थी. बीबीसी उर्दू से गुफ्तगू में रिजवानुल हक ने बताया कि मैं स्टेज पर सिर्फ एक एकोस्टिक गिटार लेकर गया था लेकिन जो चीज मुझे हैरान कर रही थी वो ये थी कि हॉल में मौजूद तकरीबन हर शख्स को वाइटल साइंस के गानों के बोल लफ्ज़ ब लफ्ज़ याद थे. लोग शुरू से आखिर तक हमारे साथ गा रहे थे. उनके मुताबिक सबसे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह थी कि उन लोगों के साथ उनके बच्चे भी मौजूद थे जिनकी उम्र 25-30 के दरमियान थी और वो भी उन गानों से उतनी ही वाकफियत रखते थे. क्या बात है, ये कोई मामूली बात नहीं. ये लिखता है उर्दू बीबीसी. वाइटल साइंस को खत्म हुए दो दिहाइयों से ज्यादा गुजर चुके हैं, दो डेकेड से ज्यादा. बैंड के मुस्तकिल रुकन जुनेद जमशेद और गैर मुस्तकिल रुकन आमिर जकी अब इस दुनिया में नहीं रहे. बैंड के आखिरी एल्बम तकरीबन 30 ईयर्स पहले रिलीज हुआ था मगर दिल दिल पाकिस्तान, गोरे रंग का जमाना, सांवली सलोनी और एतबार जैसे गाने अब भी नई नस्लों तक पहुंच रहे हैं. तो मेरा ख्याल है जब एतबार का जिक्र हुआ है तो हो जाए एतबार. जब वापस आएंगे फिर कुछ शायरी आपकी खिदमत में पेश करेंगे. यूं ही सुनते रहिएगा, बात करते हैं थोड़ी सी देर में.

0: are listening to Red FM.
1: मैं थोड़ा अपना वकील वकील ब्रिज मोहन पिछले 32 सालों तो अक्रॉस कैनेडा कार एक्सीडेंट लगियां गंभीर सट्टा पुलिस द्वारा लाए गए संगीन क्रिमिनल चार्जेस अते सीरियस इमिग्रेशन केसेस नाल कोर्ट कचहरियां च निजिठण दा साडा पूरा तजर्बा है। कार एक्सीडेंट्स दे विक्टिम्स ने कदे भी सट लगन अते अपनी जिंदगी बदलन लई नहीं सी आख्या, पर हुण ओ इंसाफ दी मांग करदे हन अते मैनूं इह कहंदे होए बहुत ही मान महसूस हो रहा है कि असी कानूनी अदालत विच उस इंसाफ नूं प्राप्त करन च उहनां दी सहायता करते हैं जिस दे सचमुची हकदार हैं। थोड़ा अपना वकील वकील ब्रिज मोहन कॉन्टेक्ट अस एट bridgemohan.com।
2: सुनो जी, अपनी किचन तो तुसी रेनोवेट करवा दी, हुन बॉश दे अप्लायंसेस भी लै दियो।
3: बॉश दे अप्लायंसेस? वो तो बहुत महंगे ने।
2: वो महंगे हुंदे सी, हुन नहीं है।
4: क्योंकि आल होम अप्लायंसेस लेके आए हन बॉश दे बिल्ट इन अप्लायंसेस ते जबरदस्त ऑफर्स। बॉश दा कंप्लीट बिल्ट इन पैकेज रेफ्रिजरेटर कुक टॉप माइक्रोवेव ते ओवन खरीदो ते नाल बॉश डिशवॉशर ते रेंज हुड लो बिल्कुल फ्री। सर्विंग फ्रॉम 5 लोकेशंस आल होम अप्लायंसेस 241 क्लारेंस स्ट्रीट यूनिट 1 ब्रैम्पटन। कॉल 416-551-3343.
5: Who's ready for some music?

0: ਓਏ ਹੋਏ ਟੱਪੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬੋਲੀਆਂ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭੰਗੜਾ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਵੱਜਦਾ ਹੈ।
1: Red FM 88.9 believes in being accountable to you, the listener, which is why we're a member of the Canadian Broadcast Standards Council. As a member of the CBSC, we are committed to upholding the highest standards of broadcast excellence and adhering to the specific codes of conduct created by the Canadian Association of Broadcasters. If you have a comment to make about our programming or a concern about something you heard on our service, write us 7 Sunpac Boulevard, Brampton, Ontario, L6S 5P6, or email info@redfm.ca. We'll respond to your concern and send you any information on the CBSC and the broadcaster codes.
2: Win Lifetime Trading. पिछले 15 सालों से सक्सेसफुली ऑनलाइन ट्रेडिंग के साथ बहुत सारी फैमिलीज को साइड इनकम कमाने का मौका देते आ रहे हैं। Win Lifetime Trading के साथ जुड़कर आप हर दिन फ्लेक्सिबल स्केड्यूल के साथ 100 से अप टू $300 तक पोटेंशियली कमा सकते हो। इनका फ्री सेमिनार अटेंड करो एवरी सैटरडे दोपहर 12:30 to 3:30 PM तक। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें एट 9052061008, दैट इज 9052061008।
3: फ्यूचर ट्रेडिंग विच काफी रिस्क हुंदा है अते हर एक इन्वेस्टर लई नहीं हुंदा। Win Lifetime Trading एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं है। सारे लॉन्ग शॉर्ट ट्रेड्स एजुकेशनल and informational purposely hun. Please review if this is suitable for you.

0: से सुन रहे हो द लेट नाइट शो।
1: जी हाँ, तू सुने रेड एफएम ते मैं हाँ थोड़े नाल अमन
2: ते मैं हाँ थोड़े नाल समर। सो बिल्कुल वेलकम बैक थोड़े सारे दा शो दे विच।
1: जी सो जेडे एक गाने दी फरमाइश आई हाण दिया, ओ मैं मेल कर देता होए उनु ऐड करन लिया, अदरवाइज ओ मेरे कोल हजे है नहीं गाना। 5376 ये मैसेज थोड़े लिए।
2: बिल्कुल जी। सो अपने सेगमेंट बारे गल करिए आपां।
1: जी जी बिल्कुल।
2: उस तो पहला थोड़ी तारीफ दे विच शेर मैं सुनाऊंगा।
1: ओए होए होए।
2: सो तैयार हो
1: इरशाद इरशाद।
2: ज्यादा दिल ते ना ले जी। सो कहंदे है कि जद भी रेडियो ते कुछ पढ़दी है गर्मी विच भी ठंड चढ़दी है।
1: ज्यादा हो गया
2: है।
1: अच्छा अच्छा।
2: जद भी रेडियो ते कुछ पढ़दी है गर्मी विच भी ठंड चढ़दी है, दोनां चो ओ वद सोहनी लगे।
1: दोना चो। अच्छा।
2: दोना चो ओ वद सोहनी लगे जदों भी हाथ विच फुल फड़दी है।
1: ओए होए होए।
2: दोना चो ओ वद सोहनी लगे जद भी हाथ विच ओ फुल फड़दी है जदों जदों कुछ रेडियो ते पढ़दी है। सो तुहाडे लई

0: You're listening to Red FM.
1: क्या आप एक कार एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हैं और तलाश है एक बेहतरीन लॉयर की? तो हमारे पास टीम ऑफ लॉयर मौजूद हैं जो आपके कार एक्सीडेंट में ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं और अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी हिंदी उर्दू पंजाबी बोलती हूँ और अरसे दराज से आपकी मदद के लिए मौजूद हूँ। 416-570-0157 याद रखिए, आपके केस में आपका लॉयर से मिलना और अपने राइट्स को जानना आपका हक है। आज ही कार एक्सीडेंट केस के लिए मुझे कॉल करें 416-570-0157। आपकी अपनी अंजुम कुरैशी।

0: समझ ही गए होंगे कि केसर स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट है GTA की पहली पसंद। डाइन इन, टेक आउट या लाइव केटरिंग, फ्यूजन खाना बने हर बार बिल्कुल फ्रेश। फैमिली एंड फ्रेंड्स के लिए घर जैसे खाने का अड्डा। नाउ टू लोकेशंस इन ब्रैम्पटन, केसर स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट।
1: इस सैटरडे दोपहर 12 तो 3 बजे तक रेड एफएम होवेगा लाइव ऑन लोकेशन एट द ब्रेक 24 कोवेंट्री रोड ब्रैम्पटन।
2: लेट्स ट्यून बैक टू सम ट्यून्स।